0: जाएगा बेटी पॉइंट पर।
1: ए राहुल तो यहाँ नहीं है।
2: अरे बॉडी मिल जाओ यहाँ पर नहीं है। दो मिनट बाद की एंट्री होने वाली है यार, कहाँ है वो? जाकर ढूंढोगे प्लीज।
1: ओह गॉड मैं अभी आया।